या तो कोना बाते ना तेरंग के लिए संदेह के सामने को दिखने वाला मां खांचो गलंग भी रिदी ठामो से निये दोनों जी यंद कब उम्मी लिए संदेह तो कुछ करेवा तात को दिखी युल तना तेरंग के लिए संदेह जिने तारुं कब जी मिले संदेह रिवा शंकन योना रिवा खचिक शाचुगो कोरकु दांग कते वार कब से लिए संदेह तो खंडे शिंकिंग के तो को मेना आज से सामने लमा खांचो गलंग भी को दिखेगा